तबसरा और करेंसी रेट्स। पल पल की खबर हर पल, आपकी पहचान आपकी जबान, आपकी आवाज, वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है।